Ahmed Naz. अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियनशिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की

0: प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି ସକାଳର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ଭିକାରୀ ଚରଣ ବଳ ବନ୍ଦନାର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ, କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହଲତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚନା, ଶିଳ୍ପୀ ଭିକାରୀ ଚରଣ ବଳ।

0: आकाशवाणी कटक अनुचिंता उपस्थापन करिछन्ति वीरेन्द्र कुमार पंडा।
1: मधुर व्यवहार मधुर चिंतन प्रति मनुष्य प्रति क्षण रे चाहे एहि आशार पूर्ण पाई से विविध कार्य कुशलतार सह करे। इंद्रिय बहिर्गत पदार्थ को आहार रूपे ग्रहण करे। आमे आखि खोलिरे बाहर रूप देखु। जिह्वा बाहर रस आस्वादन करे। एपरी समस्त इंद्रिय बहिर्गत पदार्थर आहार लिए ओ तार अनेक स्मृति मनरे साईति रखे। मनरे संस्कार भावरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध रही जाए। पुनः अन्वेषण करे मिलिले सुख पाए न मिलिले दुख पाए। मिलिबार संभावना विभिन्न दृष्टिकोणरु अभाव हुए। तेणु प्रत्येक मनुष्य जीवन को दुखमय बोली कहे। जगत दुखर कारण बोली भावे। अन्य पाखरे दुख प्रकाश करे। यथाशक्ति निज दुख को लंबा करी कहे। से भावे तापरी दुखी बोधे संसार रे आउ केही नाहंती। जणे दुखी आउ जणे दुखी को दुख जणाइले लाभ कोन? कारण से जहाँ को दुख कहुची से मध्य अन्य पाखरे दुख कहुची। भिकारी को केही कोन केबे भिक मागे? ठीक सेहिपरी विषादग्रस्त लोकटी तुमको सुखी कराइब किपरी? द्वितीयत अनेक कविंक मतरे सृष्टि हेउची मधुमय। प्रकृति जगतरे प्रत्येक जड़ चेतन आमको मधुमय कराइबारे सहायता करुछन्ति। आमे जहाँ को दुख बोली कहुचु अन्य मानको पाई ताहा सुख। तेणु जीवन को दुखर कारण बोली भावी विषादग्रस्त हेबा अपेक्षा सुखर सन्धान रे जीवन पाइछि ओ प्रति मुहूर्त को मधुमय करिबी। एई चिंतन जदि बारंबार चिंता करिबा मनुष्य बहु आनंदर मार्ग को दर्शन करिब। मनुष्य चाहिले निज जीवन को माधुर्यपूर्ण करिपारिब। कारण प्रभु आमको केवल मधुर सन्धान पाई ही जीवन देइछन्ति। अनेक तपस्या बलरे मनुष्य जन्म मिलिछि। भागवतकारंक कथारे अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म रवि तले। पूर्व सुकृत तथा पूर्व कर्म फलरे नर शरीर पाई जदि मधुमय जीवन जापन करिपारले नाही तबे कार्य प्रणाली रे केउटी त्रुटि रहिछि बोली भाबिबा उचित। प्रत्येक मनुष्य सामाजिक जीवन रे अनेक लोकंक सह संपर्क रे आसे। किछि लोकंक देखिले मनरे स्वतः मिसिबाकु इच्छा हुए। अनेक लोकंक देखिले सामान्य संपर्क रखिबाकु मध्ये इच्छा हुए। मनुष्य निजर संस्कार जेपरि करिब तदनुरूप विचार हेबो। जेपरि दृष्टि तार सृष्टि मध्ये सहीपरि हेबो। अन्न जेमिति खाइबा मन सेमिति तयारि हेबो। पानी जेपरि पीबा वाणी मध्ये सेमिति हेबो। संस्कार जेपरि हेबो विचार सहीपरि हेबो। एणु सदा

0: यदा सामुद्रिक मार्गाः सुरक्षिताः भवन्ति, आपूर्ति मार्गाः मुक्ताः तिष्ठन्ति, अथ नाविकाः च सुरक्षिताः भवन्ति।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन च ह्यः रक्षा ऊर्जा अंतरिक्ष कौशल गतिशीलता जनानां मध्ये परस्पर सम्पर्कः चेत्येतेषु सदृशेषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहकारस्य प्रगतिः समीक्षां कृतवन्तौ। नवदिल्ल्यां सम्पन्नायां द्विपक्षीय वार्तायां उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां कृष्ण सागर क्षेत्रे च प्रवर्तमानान् संघर्षान् समेत्य परस्पर हित संबद्धेषु प्रमुखेषु क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु स्वकीय विचारान् प्रकटितवन्तौ। प्रधानमंत्री मोदी पुनः प्रतिपादितवान् यत् संघर्षाणां समाधानस्य मार्गः संवादेन एव प्रशस्तः भवति, तथा भारतं शान्ति प्रयासेषु साहाय्याय तत्परमस्ति इति वार्ताः।

ਸਿਰਾਂ ਕਤੇ ਇੰਗੇ ਜਿਦਾ ਪਾਵਾ ਜੋਬ ਲਿਤੀ ਹੈ।

0: ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କଣ୍ଠ ଦେଇଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ। ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା। ସମୟ ସକାଳ 8ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟିକେ ପରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस

0: रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटक्यो भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
3: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
5: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
4: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted

0: in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियान। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6थे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु

0: तापमान से होता है, इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बारिपदा समय सकाळ 8:15 आरंभ करुछु आजर गीतांजलि। कळकळ बहुथिबा झरणा केतेबेळे नदीर रूप निए त केतेबेळे शांत स्निग्ध जलधारटिए त पुणि केतेबेळे बन्याप्लावित पूर्णगर्भ नदीटिए। केते बण पहाड़ दे अबारित धारे बही चालिथाए से ठिक जेमिति चपलमती कन्याटिए परि। तार स्वच्छ निर्मल जलधारा सते जेमिति मने हुए अलसी कन्यार शामुका परि आखिरु झरी पड़ुथिबा बिंदु बिंदु मुक्ता।

0: कौन आपण आईटीआई प्लस टू डिप्लोमा किंबा बीटेक कंप्लीट करबा परे निज करियर बूस्ट करबा को चाहौ छंती
1: तेबे स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा द्वारा वर्ल्ड स्किल सेंटर रे 1 ईयर एडवांस स्किल डेवलपमेंट कोर्स रे भाग नियंतु जेउथिरे आपण को मिलिबो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग ग्लोबल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज ओ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस
0: बैच 10 सितंबर 26 27 एडमिशन आरंभ होई सारिछि आवेदन रो शेष तारीख 30 सितंबर 2026
1: अधिक जानिबा पई विजिट करंतु www.worldskillcenter.org किंबा कॉल करंतु 1-800-266-002
2: आकाशर कळा बादल देखे आनंदरे नाचि उठितबा मयूर पादर ताळे ताळे बाजि उठे कहा पादर नुपुर झिपि झिपि वर्षा आउ सिरि सिरि सितुआ पवन संग को झरणार शीतल जलरे सिहरि उठे देह वर्षार रिमझिम सुररे भरि रहिथिबा आवाहनी गीत पुलकित करे कोंळ मन को

0: हाँ भाई कह रहे चलो हो
1: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा टिके फिटे कि कह
1: माने सिनी और उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आउ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची होते सुविधा
1: जानिनो कि हो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनिकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना कि कहजो
1: चलो
3: শীতল মন্দাকিনীর ধারা পরি বহি যাওয়া নৈর আরপাখে সবুজিমা ঘেরা গাঁটিয়ে কিয়া কেতকের সুরভীরে সুরভিত তার পবন সে গাঁর পাণি পবনরে বড়ি কঁল মনটিয়ে তার গোলাপি দেহরে বয়সর ছিটা কৃষ্ণচূড়া পরি রঙ্গিন অধরর বহি আসে প্রেমর ধারা।

प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किमा

आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रोग्राम है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं हीरोपंती फिल्म का गीत, मोहित चौहान की आवाज में कौसर मुनीर की रचना, साजिद वाजिद का संगीत।

विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के प्रति जागरूक करना और आपात स्थिति में सही समय पर मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दुर्घटना, चोट, जलने या अचानक तबीयत बिगड़ने पर दी गई तत्काल और उचित प्राथमिक चिकित्सा कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रोताओं आप भी इस बात को लेकर जागरूक नहीं हैं, तो आप भी सीखें और अपने आसपास रहने वालों को भी बताएं, इस बात की जानकारी दें कि प्राथमिक उपचार किस तरह किए जाते हैं जो किसी भी आपातकालीन या इमरजेंसी की स्थिति में काम आते हैं और ये किसी की जान बचा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। तमंचे इस फिल्म से मोहित चौहान की आवाज है, गीत और संगीत कृष्णा का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: और अब सुनवाते हैं हम टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा है, शरीफ तोशी का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए अब आपको सुनाते हैं हंसी तो फंसी। इस फिल्म का गीत चिन्मय श्रीपाद, शेखर राव जियानी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और विशाल शेखर का संगीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह का गाया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। सोहेल सेन की ने इसके गीत को सुरों में ढाला है और फिल्म का नाम गुंडे।

बैंग बैंग। इस फिल्म का गीत अब सुनिए विशाल ददलानी की आवाज में, और गीत और संगीत, गीत है विशाल ददलानी का, संगीत विशाल शेखर का।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जगन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रियतम संगीत के समुद्र में गोता लगाएं, तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

दरअसल शंकर जयकिशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जयकिशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जयकिशन है।

ये गीत संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाने लगे। आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाडी लाल जी से हुई। फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

का खेल देखिए कि कुछ ही समय के बाद जय किशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीत का जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते थे।

रोचक बात यह है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहाँ से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर करें।

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

दरअसल जयकिशन रोमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

जय किशन ने प्रेम विवाह किया था। वे बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुनें बनाने के साथ साथ जय किशन शायरी और कविता के भी बड़े शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था।

दोस्तों, ये जिक्र उन गीतों का है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने बनाई थी फिल्म दिल अपना और प्रीति पराई।

दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीतकार जय किशन एक सीधे सादे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जय किशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

सन 1971 में 39 वर्ष की छोटी आयु में संगीतकार जय किशन ने इस संसार को अलविदा कह दिया।

संगीत का जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ

0: शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिनहंग के साथ बैठक भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंचे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो रेल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के 131 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। यूएस ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आज पहले सेमीफाइनल में रूसी खिलाड़ी करेन खाचनोव को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आयरना सबलेंका आज रात न्यूयॉर्क में फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। ये सुनकर माया को भी

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिसे प्रेम कर बैठी है वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खतों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आए?

0: ये हम आपको नहीं बता सकते।
1: क्यों?
0: ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे।
1: अच्छा ठीक है।
0: माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहां कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला,

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

0: आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।
1: तो फिर

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है अलग अलग।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, और फिल्म का नाम है शक्ति।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला और शिकायती गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है नगीना।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अमित कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रपट संगीत में अगला और अंतिम गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है चालबाज़।

0: दोस्तों नमस्कार, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका सर।
1: राजेश जी, जो आपका सबसे बड़ा काम है वो मुंबई को लेकर है। आपकी कई किताबें हैं, जो मेरी नजर सबसे ज्यादा पड़ी वो आमची मुंबई सीरीज की दो किताबों पर पड़ी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुंबई कब आए, और दूसरा ये कि ये जो मुंबई पर काम करने का सिलसिला एक के बाद एक के बाद एक मुंबई पर आपकी किताबें आ रही हैं, ये कैसे शुरू हुआ?
2: देखिए, मैं 1989 में मुंबई आया, अमेठी से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। तो जो मेरा पहला ठिकाना बना चर्चगेट इलाके में, और वो है मुंबई यूनिवर्सिटी के राजाबाई टावर के ठीक सामने, महर्षि कर्वे रोड पे वो बिल्डिंग है।
1: अच्छा,
2: क्वींस कोर्ट। और अगर आप देखें तो जो वास्तविक मुंबई है वही इलाका है चर्चगेट के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में। जितनी चीजें हैं मुंबई को लेके, चाहे इतिहास से जुड़ी हो या संस्कृत से जुड़ी हो या राजनीति से जुड़ी हो या मुंबई के विकास के जुड़ी हुई, सारी की सारी चीजें उसी 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी। चाहे

0: विक्टोरिया टर्मिनस हो, चाहे और भी चीजें हो, लायन गेट हो जहां नौसेना विद्रोह हुआ था,
1: रिगल टॉकीज
0: हो, ओवल मैदान हो, क्रास मैदान हो, आजाद मैदान हो, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। तो उस इलाके में रहते रहते मुंबई के बारे में मुझे प्रेम जगा, एक मोहब्बत जगी, जिसको आप इश्क कह सकते हैं। तो मैं मूल रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने के लिए आया था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बैच के जितने भी लोग थे वो एक एक करके समय आने पर मुंबई से ट्रांसफर करवा के अपने गांव की ओर चले गए। लेकिन मुंबई के प्रति प्रेम की वजह से मैं रुका रहा और 1990 के आसपास फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो पहला मतलब मेरी नजर में आया कि जिस शहर ने मुझे रोजी रोटी दी है, उस समय तो रोजी रोटी ही थी, नाम और सम्मान की कोई बात ही नहीं थी, संघर्ष का दिन था। तो मैंने सोचा कि मुंबई पे लिखना शुरू करना चाहिए। और आप ये देखिए, विसंगति देखिए कि मैं गंभीर लिखता हूं मुंबई पे, लेकिन जो मैंने पहला लेख लिखा था वो जो था ये था, ये है बॉम्बे मेरी जान, और वो व्यंग लेख था मुंबई पे, वो मेरी शुरुआत थी।
1: जी, जिस इलाके से आपने शुरू किया, आपने बताया कि क्वींस कोर्ट वाला इलाका था जहां आपकी रिहाइश बनी, साउथ बॉम्बे का वो इलाका जहां चारों तरफ इतिहास बिखरा हुआ है, और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो भी उसी इलाके में है। तो आपका जो आना जाना, आपका जो काम काज है, वो पूरा साउथ मुंबई में हुआ। वो कौन सी चीजें थी दक्षिण मुंबई की जिन्होंने आपको बहुत फैसिनेट किया?
0: वो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मेरे सामने वो राजाबाई टावर मुंबई यूनिवर्सिटी का, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको पता होगा वाटसन होटल,
1: बिल्कुल, जहां मुंबई का पहला सिनेमा दिखाया।
0: यस, पहला ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने वहां पहला सिनेमा दिखाया। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े लोग मोहम्मद अली जिन्ना से लेके मार्क ट्वेन तक उस वाटसन होटल में ठहरे। और एक बात और भी, आज तो 5 स्टार 7 स्टार का जमाना है सर, उस जमाने में जब स्टार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये वाटसन होटल जो है 7 स्टार के तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता था। जब मैं वाटसन होटल से गुजरता था 1990 के दशक में, तो मुझे जब मैं लगता था उसकी हालत देख के, बाद में तो उसका रिनोवेशन होने लगा, तो मैं देखता था तो मैं सच में अंदर से रोता था कि जिस होटल ने, जिसमें ल्यूमियर्स ब्रदर ने पहली फिल्म दिखाई, और जो होटल इतिहास का गवाह है, आप देखिए उसकी दुर्दशा।
1: ना लोगों को ये पता है कि ये वो जगह है, ना कोई बोर्ड
0: कुछ
1: है,
0: नहीं। और या आप क्रॉफर्ड मार्केट की ओर अगर थोड़ी दूर पे जाएं, चर्चगेट इलाके से 1.5 किलोमीटर दूर, तो क्रॉफर्ड मार्केट की भी दुर्दशा। इस तरह की चीजों को देख के जो मेरे मन में आया कि मुंबई पे लिखना चाहिए। और थोड़ी दूर पे लायन गेट था,
1: जी,
0: आपको पता है कि रॉयल नेवी का जो बहुत बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी शुरुआत वहीं से हुई,
1: बॉम्बे और कराची वाला।
0: यस, वो जो विद्रोह था बॉम्बे वाला, और वो एक साथ कई जगहों से हुआ है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आप सब पता होगा क्योंकि आप भी मुंबई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि वो जहां पे ये महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय है, वो जगह पहले कब्रिस्तान थी, मेडम पॉइंट एक जमाने में, क्योंकि इस इलाके में पूरा का पूरा इतिहास बिखरा है। हालांकि सर, मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन वहां से जो मुंबई को लेके एक रुचि उत्पन्न हुई वो बराबर चलती रही। 2012 में मुंबई पे मेरा पहला काम आया, एक मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद।
1: मराठी क्या पुस्तक थी?
0: मराठी पुस्तक थी मुंबई तील गुनेगारिंचा एनसाइक्लोपीडिया, मेरे मित्र श्री प्रभाकर पवार जी की मराठी में पुस्तक, वो दैनिक सामना से जुड़े थे। और 1993 से मैं दोपहर का सामना से जब जुड़ा तो मैंने 2012 में उसका अनुवाद किया, मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया। मुंबई पे मेरा पहला
1: मतलब क्राइम वाला पूरा काम, जितने डॉन हुए हैं।
0: जी, मेरी दिलचस्पी थी, और फिर उसके बाद चलता गया, और 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि पूरे के पूरे 5 सालों तक दोपहर का सामना में मेरा एक कॉलम छपता था आमची मुंबई, मुंबई के इतिहास में।
1: उसमें आप लगातार इतिहास पर काम करते थे?
0: लगातार। और 2019 में मेरी पहली किताब आई आमची मुंबई।
1: जी,
0: और जब आमची मुंबई आई, आपने बात की आमची मुंबई 2 की, जब आमची मुंबई आई 2019 में, तो वो आमची

0: मुंबई जो है वो अखबारी लेखन था। अखबारी लेखन की एक सीमा होती है और मुंबई पर काम करने की सर मेरी भूख इतनी थी कि किसी अखबार के कॉलम से वो मिट नहीं सकती थी। तो 2019 से, क्योंकि कई कई कहानियां इतनी रोचक थी, इतनी बड़ी थी कि वो अखबार के कॉलम में समाहित हो नहीं सकती थी, तब मैंने 2019 में आमची मुंबई 2 पे काम करना शुरू किया, जो पिछले साल 2025 में आई।
1: क्या बात है। तो दो बड़ी किताबें मुंबई के इतिहास पर ये नजर आती हैं और उसके अलावा मुंबई के माफिया पर भी आपकी किताब है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि मुंबई के इतिहास पर काम करना इतना आसान नहीं है, तो किन लाइब्रेरीज की और ग्रंथों की खाक छानते हुए आपने तथ्य जमा किए और ये कितना मुश्किल था?
0: वो एक बड़े इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम उससे कोई सबक नहीं लेते। जब हम इतिहास पे शुरू करते हैं तो हमको अपना जो नजरिया है बहुत विस्तृत करना पड़ता है। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो आज इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जो है अगर किसी पे भरोसा करता हूँ इस मामले में ग्रंथालय की, तो दो है। पहले नंबर पे एशियाटिक लाइब्रेरी है, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी प्रचार सभा की लाइब्रेरी है, और जो मेरे संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का पुस्तकालय भी है वो बहुत समृद्ध है।
1: अरे गजब।
0: वहाँ हिंदी, अंग्रेजी, मराठी की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, रेफरेंस की पुस्तकें हैं, तो वहां से मैंने शुरू किया। इस बारे में मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, लगातार रिसर्च करता हूँ। मैं सर आपको रिसर्च का एक उदाहरण देना चाहूंगा
1: जी,
0: कि आम धारणा है कि मुंबई जो है 7 द्वीपों से बनी है, उसमें मुंबई द्वीप जो मुख्य द्वीप है और माहिम है, फिर कोलाबा है, मझगांव है, वर्ली है, ओल्ड वुमन आइलैंड है, लिटिल कोलाबा है, इस तरह के 7 द्वीप हैं, आम धारणा है। लेकिन हकीकत यह है कि आप किस तरह से कहते हैं कि मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। मेरी पुस्तक आमची मुंबई 2 का पहला लेख है वह 7 द्वीप जिनसे मिलकर मुंबई बनी, लेकिन उसी पुस्तक में 7वां लेख है क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। हकीकत में आप 7 द्वीप कहते कैसे, वो थियरी आई कहां से? मुंबई पे इतिहास के शोध किया है मिस्टर टिम राइडिंग ने, बहुत बड़ा शोध है उसने। उनका कहना है कि 7 द्वीप नहीं थे, जो 7 द्वीपों की बात है तो वो 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो मिथक और भ्रांति से आई। एक्चुअली वो जो द्वीपों की संख्या है 4 से 6 है ओरिजिनल। रॉबर्ट मर्फी ने इस प्रश्न को उठाया भी, उन्होंने एक नक्शा भी बनाया जिसमें 4 या 6 द्वीप, क्योंकि वो 2 को गिनते नहीं थे। मझगांव और परेल उनकी नजर में द्वीप अलग अलग नहीं थे,
1: वो लैंडलॉक एरिया है।
0: हाँ, लेकिन उसके बाद हकीकत में जो 7 द्वीपों की थियरी आई सर, वो ईसवी सन 150 में टॉलेमी का एक ग्रंथ है ज्योग्राफिका, पूरा नाम है लेंडास द ज्योग्राफिका, यानी कि भूमि का भौगोलिक शास्त्र। उसमें जो है मुंबई यानी पूर्व में स्थित एक जगह का जिक्र जो है हेप्टानेशिया के रूप में किया गया है। हेप्टानेशिया का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है 7। तो जो 7 का मिसकंसेप्शन है वो उधर से आया, ओरिजिनल वो 6 द्वीप से ज्यादा नहीं थे। तो हमको इस चीज को खोजने के लिए जो टिम राइडिंग का शोध था, बहुत लंबा चौड़ा शोध था, तो मैंने कम से कम उसकी 3 जगहों पे क्रॉस चेकिंग की, जो यहाँ लिखा है वो सच है क्या, क्योंकि जब हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किताब के जरिए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि कभी किसी पाठक ने ये बताया कि सर ये आपने गलत लिखा है। तो उसमें मैंने 2-3 लाइब्रेरी की खाक छानी और कई कई चीजें हमको मिली, तो उससे लगा कि नहीं, जो टिम राइडिंग का शोध है वो अपनी जगह पे सही है, रॉबर्ट मर्फी का भी शोध सही है, जॉन थॉर्नटन

0: का एक नक्शा था वो भी सही है। तो इस ढंग से इस शोध में होता है, एक सिर्फ छोटी सी घटना, एक छोटे से प्रसंग को लेके मैं इस शोध की बात और आगे बढ़ाऊंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, आजादी की पहली लड़ाई, तो वो और जगहों की तरह मुंबई में भी हुई। मुंबई में हुई का मतलब यह है उसको करने की कोशिश की गई। मरीन बटालियन के कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने मिलके यह योजना बनाई। उनकी योजना थी कि नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे मुंबई में। लेकिन उस जमाने में मुंबई का कमिश्नर था चार्ल्स फोरजेट। फोरजेट का जो इंटेलिजेंस था वो बहुत गहरा था, बहुत अच्छा था। तो सोनापुर यानी मरीन ड्राइव के इलाके में, मरीन लाइंस के इलाके में क्रांतिकारियों की, सैनिकों की बैठक होती थी। फोरजेट खुद भेष बदल के उसमें गया उस बैठक में, और वहां से ये योजना जो है, इस योजना का पर्दाफाश हो गया। मुंबई पुलिस ने, चार्ल्स फोरजेट ने उस क्रांति को जो है उसको एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया, और कई लोगों को उसमें सजाएं मिली, जिसमें दो लोगों को आजाद मैदान में, उस जमाने में कांपा का मैदान कहा जाता था, तोप से तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। दो सिपाही, मंगल गडरिया और सैयद हुसैन, क्योंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिशों का शासन था, तो किसी भी पुस्तक में मंगल गडरिया और सैयद हुसैन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलता है। मुझे खोजबीन के दौरान कम से कम एक ही मुद्दे पे मैं 6 महीने लगा था, तो कहीं से सिर्फ इतना पता चला कि मंगल गडरिया जो था वो मूल रूप से गोंडा के गांव का निवासी था, और सैयद हुसैन लखनऊ के आसपास के। तो ये मेरी, अभी भी मुंबई के कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों का ओरिजिन अगर किसी ने खोजा या थोड़ी सी ही जानकारी मिली तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने खोजा। लेकिन उसमें 6 महीने सिर्फ एक ही तथ्य खोजने में चले गए। इतिहास के साथ सर ये होता है
1: जी। तो इतनी मशक्कत करने के बाद तथ्य आपने जमा किए, इन दिनों आप किस किताब पर काम कर रहे हैं?
0: इन दिनों का ये है मेरी पुस्तक साहित्य और मुंबई। और एक्चुअली मुंबई के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि यहाँ साहित्य सृजन की, लेखन की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है, और ये शहर प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो साहित्य और मुंबई में मैंने 5 भाषाओं पे फोकस किया है। जैसे मुंबई के साहित्य, संस्कृति और इतिहास पे लिखी गई पुस्तकें, नॉन फिक्शन, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी। इसी तरह मुंबई को लेकर लिखे गए उपन्यास, इन 5 भाषाओं में उनका जिस्ट, उनका सारांश। मुंबई पे लिखी गई कविताएं इन 5 भाषाओं में, मुंबई पे लिखी गई कहानियां इन 5 भाषाओं में। मतलब इस तरह के काम हुए हैं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, सन 1817 में शहर की पहली शहरी जीवनी उर्दू में छपी।
1: बाबा,
0: लेकिन वो छपी कहाँ? मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ।
1: अरे क्या,
0: शहर की पहली जीवनी। तो आप उसमें इस तरह की किताबों का जिक्र देखेंगे, बुक ऑफ बॉम्बे को पढ़ेंगे, मुंबई चा वृत्तांत पढ़ेंगे, मुंबई चे वर्णन गोविंद नारायण माडगांवकर की किताब है
1: जी।
0: और जेम्स मैकलिन की गाइड टू बॉम्बे, इस तरह की किताबों पे पढ़ेंगे, और बहुत सारी हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी की किताबों, कहानियों और कविताओं की चर्चा उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे
1: जी। तो ये भी बहुत मशक्कत का काम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है।
0: पिछले साल जुलाई से चल रहा है उस पे शोध, और अभी 3-4 महीने और लगेंगे सर।
1: तो क्या देश के अलग अलग इलाकों में जाना पड़ता है
0: या नहीं? मुंबई, मुंबई पे काम, मुंबई की लाइब्रेरियों में काम, मतलब इस तरह के विद्वानों से मिलना जो साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू के विद्वानों से, लाइब्रेरियों में जाना, पढ़ना, उधर से तथ्य निकालना।
1: मुंबई माफिया पर जो आपने काम किया है, ये इतिहास कितना पुराना है?
0: ये बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जब से ये मोस्टली जो इतिहास है 1950 के दशक से, आजादी के बाद के दशक का, तब छुरे और गुप्ती वाले थे, उन्होंने शुरू किया, और दूसरी बात 60-70 के दशक में वो गोल्डन गैंग वगैरह लोग आए, और फिर

0: थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 80 के दशक से मुंबई माफिया का प्रभुत्व तो बहुत तेजी से शुरू हुआ। हाँ, जब वो हाजी मस्तान, करीम लालदास, शुक्र नारायण बकिया, दाऊद वगैरह का तो बहुत बाद में प्रवेश हुआ, फिर मतलब धीरे धीरे आज भी है, लेकिन अब हम ये एक जमाने में मुंबई को हम माफिया सिटी बोल सकते हैं, लेकिन अब नहीं बोल सकते। अब तो बहुत शांत और बहुत सुव्यवस्थित और बहुत समृद्ध महानगर है आमची मुंबई, जिससे मुझे बहुत गहरा प्रेम है। तो इसलिए मुंबई के माफिया पक्ष की या मुंबई के निगेटिव पक्ष को मैं बहुत सिंबॉलिक रूप से कहता हूँ, उसकी बजाय मेरी नज़र में मुंबई के और जो सर्वसमावेशी संस्कृति है, मुंबई की समृद्धि है, सबको अपना बनाने की एक जो यहाँ की मिट्टी में तासीर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
1: मुंबई सदा से मिनी हिंदुस्तान रहा है, इसका फूड कल्चर, सिनेमा की संस्कृति, इन सब पर लिखा आपने?
0: हर तरह से, जब मैंने मुंबई पे कॉलम लिखता था तो मैंने मुंबई की नाइट लाइफ पे लिखा, सिनेमा पे लिखा, फिल्म स्टूडियोज की सोकांतिका पे मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, आमची मुंबई वन में वो लिखेंगे, और खानपान की जो संस्कृति है उस पे, उन सब पे भी मेरी कोशिश रही कि हर चीज यहाँ पे मुंबई का जो भाषाई परिदृश्य है, मेरी उस पे भी एक पुस्तक आई है, मुंबई और हिंदी
1: जी,
0: हिंदी को
1: तो
0: लेके।
1: मुंबई में हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, ये भाषाएं मुख्य रूप से चलती हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान है। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इस पर आपने गौर किया?
0: बिल्कुल गौर किया। मुंबई में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा कुल 16 भाषाएं हैं जिनको मुंबई की मुख्य भाषा होने का दर्जा प्राप्त है।
1: 16 भाषाएं?
0: हाँ, 16 जो मुख्य भाषाएं हैं। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि मुझे जैसे आपने मिनी हिंदुस्तान की बात की, मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुंबई या महाराष्ट्र और मुंबई पूरे देश में इस वजह से अलग है कि मुंबई की सर्वसमावेशी संस्कृति है। दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं, यहाँ पर आपको उन धर्मों के लोग मिल जाएंगे, और उनमें एक जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, उनके दर्शन होंगे। इसलिए मैं मुंबई को मिनी हिंदुस्तान से ज्यादा एक लघु विश्व का दर्जा देता हूँ, जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर देश के लोग मिल जाएंगे।
1: ये जो लघु विश्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे पकड़कर हम दूसरी दिशा में जरूर जा सकते हैं, जहां मुंबई में दूसरे देशों के लोगों की रिहाइश बहुत रही है, इजरायली, ईरानी और ब्रिटिश, अमेरिकन, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। आपका एक काम है आजादी की लड़ाई और मुंबई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन आता है 9 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942, हाँ, कह ले हम, जो ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। लेकिन कांग्रेस रेडियो, या मैं ये कहता हूं कि 20वीं सदी से पहले की लड़ाई क्या थी आजादी की?
0: नहीं, मुंबई का आजादी की लड़ाई में जिसका आपने जिक्र किया अगस्त क्रांति, उसके अलावा भी है,
1: एक उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो,
0: हाँ,
1: था,
0: उषा मेहता जी और लोगों ने मतलब उसको शुरू किया था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि किस ढंग से जुड़ा है, ये जो नारे हैं, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या करो या मरो, या साइमन गो बैक, ये 2-3 महत्वपूर्ण नारे पूरे देश में गूंजे। लेकिन ये नारे गढ़े किसने? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये गढ़े मुंबई कर यूसुफ मेहर अली जी ने।
1: ओहो हो,
0: उन्होंने मतलब क्विट इंडिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो या साइमन गो बैक, महात्मा गांधी जी मतलब ने यूसुफ मेहर अली जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इस तरह को, इस चीजों को किस तरह से कर सकते हो। तो उन्होंने ये 2-3 नारे गढ़ के दिए और पूरे देश भर में गूंजे। साइमन गो बैक के नारे वो पंजाब में भी गूंजे या पूरे देश भर में। एक और महत्वपूर्ण इस मामले में एक और है जो आजादी की लड़ाई में मुंबई के योगदान से संबंधित है, एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
1: वाह वाह,
0: ये कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक का नारा है
1: जी।
0: लोकमान्य तिलक जी ने इसको फेमस किया, इसको विख्यात किया, लेकिन ओरिजिनली इस नारे को लिखा और गढ़ा जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने, मजगांव में उनके नाम पे गार्डन है। तो मुंबई में इस तरह की कहानियां हैं।

0: और मैंने आपको,
1: ये तो बहुत शॉकिंग है।
0: हाँ यस, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 1857 में मेरठ में और जगहों पे क्रांति, मुंबई की क्रांति का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं आता
1: जी,
0: लेकिन वो बॉम्बे प्लाट के नाम से, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो बॉम्बे प्लाट के नाम से ये पूरी की पूरी क्रांति, जो मैंने सैयद हुसैन और मंगल गडरिया की कहानी बताई आपको, जो प्रसंग बताया वो पूरा का पूरा है। और अक्टूबर 1857 में, 10 अक्टूबर 1857 को मंगल गडरिया और सैयद हुसैन को आजाद मैदान में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। तो मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है
1: जी। अच्छा, भारत में जो रेलवे मूवमेंट शुरू हुआ,
0: हाँ,
1: वो तो जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुआ, और 1853 में जो मुंबई से ठाणा तक ट्रेन चलाई गई, और इस रेल मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ, रेल मूवमेंट के बारे में ये सपना था कि एक रेलवे होना चाहिए, और हमारे लिए गर्व की बात है कि जगन्नाथ शंकर सेठ, नाना सेठ ने इस बारे में बहुत सारा काम किया था। उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई, उसके बाद इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनी, जिसका विलय ब्रिटिश सरकार की संस्था में हुआ, और वो 1853 में वो ट्रेन चली। लेकिन ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मुंबई सीएसटी से लेके थाना तक उस जमाने में, मतलब रिहाइश जो है एकदम ये थी, और दूसरी पहाड़ियां थी छोटी छोटी, और जो इलाका है मझगांव वगैरह, या जहां से रेल गुजरती थी, या आगे चल के पुल बनाना, है बहुत कठिन काम था। और लोग ये कहते हैं कि ये सब ब्रिटिश सरकार की वजह से ही संभव हुआ, अगर ब्रिटिश सरकार न होती तो 1853 में जो मुंबई से थाना तक पहली ट्रेन चली, वो ट्रेन चल नहीं पाती।
1: जो रेलवे स्टेशंस थे वो तो आज जहां हैं वहां से बहुत अलग जगहों पर हुआ करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: तब के जमाने का जो भौगोलिक वो डेमोग्राफी थी सर, तब के जमाने की अलग थी और आज के जमाने की अलग थी,
1: तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: हाँ, तब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इस तरह की जगहों पे रेलवे स्टेशन होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्बल के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जमीन से बहुत ऊपर हैं, तो वो इसी कॉन्सेप्ट का नतीजा है
1: जी। बहुत बढ़िया, आपसे तो बातें जो हैं वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, पर बहुत अच्छा लगा मुंबई के इतिहास पर जिस तरह से आपने काम किया है, आमची मुंबई वन, आमची मुंबई टू, मुंबई माफिया, मुंबई और हिंदी, मुंबई और साहित्य, ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत दिलचस्पी जगाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए, और मुझे लगता है कि जब हमने सब चीजों की बातें की तो चलते चलते मुंबई पर एक फिल्मी गाना भी आपकी पसंद का सुनवा लिया जाए।
0: सिर्फ यही है, जरा हटके जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान,
1: सीआईडी फिल्म का ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर की तर्ज है। सुनते हैं ये गाना।
2: दिल

0: मेरी जान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश विक्रांत जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर।
3: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
4: ये विविध भारती है, दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी, जेल

0: कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

कार्यक्रम में अगली आवाज है मुकेश की, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: मशहूर हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है आशा।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दीवाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
5: आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है राज हट।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है अमन।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने सुने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे कुछ यादगार सदाबहार गीत। आज शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की याद का दिन है। साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

बातचीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हमसफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एक चीज कयामत है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देखा तुम्हें देख के माना वो ठीक कहा करते थे। जिंदगी में रस्में ये कस्में सभी तोड़ के चले आओ, लेकर मौजों का सहारा बना लेंगे हम तूफान में किनारा। वहां सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने, आती है जब ये रुत मस्तानी बनती है कोई ना कोई कहानी। अब के बरस देखे बने क्या फसाने।

अब के बरस देखे बने क्या फसाना। कितनी खुशियां कितने गम, इस जिंदगी के दिन कितने कम, दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं। हमसे मत पूछो कैसे, यह किस्सा है अपनों का, गहरी नदी से ज्यादा मन में शोर, सबको किनारे पहुंचाकर माझी तो किनारा कभी पाएगा। सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश और कमेंट्स। हम सफर वही है जो मुश्किलों में भी कहे, तुम मुस्कुराओ बस एक बार, पलकें उठाओ जब भी सावन की फुहार बरसती है, मन मयूरा नाच उठता है और दिल का सूनापन दूर हो जाता है, शाम ढलते ही जब दिए जलते हैं तो गम के बादल छट जाते हैं और उम्मीद की एक नई सुबह मुस्कुराने लगती है। अधूरी ख्वाहिशें अपने सपने बुना करती हैं जो गाहे बगाहे दिल की उमंगों को जगा देती हैं, फिर दिल ये महसूस करने को मजबूर हो जाता है काश ये सपने साकार होते, सपनों की दुनिया क्षणिक ही सही एक सुखद एहसास तो दे जाती है। जैसे सीता राम राधा श्याम मिले, कभी ना कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। जब जीवन में कोई चाहत अधूरी रह जाती है तो मन उसे भूलने के बजाय कल्पनाओं में जीवित रखता है, मन में जो अधूरापन होता है वो सपनों और उमंगों से भरी एक दुनिया बनाता है जहाँ कोई बंदेश बंधन नहीं होते, बस उमंगों का सैलाब होता है जो हमें जीने की आशा देता है। और आजाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। एक दोस्त ने हमें मैसेज लिखा है, कहीं मोहब्बत की आहट, कहीं सपनों की उड़ान, कहीं जिंदगी के गम और कहीं किनारे की उम्मीद। बहती जाती है ये नदी कल कल गाती नदी, खेतों को पानी देती है सबकी प्यास बुझाती है, पर्वत से ये निकलकर रास्ता अपना बनाती है सागर तक जाने की धुन में, कभी ना थकती है चलती जाती आगे आगे, दुख सारे सबके ये भोगे, जीवन का संदेश यही है बढ़ती जाना आगे आगे। इतनी सुंदर कविता भेजने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। राजा एक सीधा सादा हाउस बोट चलाने वाला लड़का और रीता एक अमीर लड़की, दोनों के विचार अलग अलग, सादगी खुलापन रहन सहन का अंतर, अमीर गरीब वर्ग की सामाजिक दूरियां टकराव, कई उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद होती है प्यार की जीत और राजा और रीता हो जाते हैं एक। तो हमें बताइए कि राजा और रीता की भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार कौन थे और इस गीत को कहां फिल्माया गया वो भी बताएं। साथियों साथ में हमें ये भी बताइए कि नदी में, नाव में, शिकारी में, नदी किनारे में इस वक्त आपको कौन कौन से गीत और फिल्में याद आ रही हैं वो भी हमें बताएं।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। शशि कपूर, नंदा आगा, शमी, कमल कपूर और इस गीत की शूटिंग कश्मीर के श्रीनगर इलाके की खूबसूरत वादियों और डल झील में की गई थी। आपके कुछ कमेंट्स हम और पढ़ेंगे। आज की इबारत में नदी, तालाब, शिकारी पर गीतों का संगम है जो एक बेहद खूबसूरत भावनात्मक और रूमानी रिश्ता कहलाता है। आजकल शहरों की भागदौड़ और समाज के बंधनों और तनाव से दूर नदी की लहरों में नाव पर सवार होकर एक अलग सुकून का एहसास होता है। जब आप अपने हम सफर के साथ कश्ती पर सवार होकर कुछ पल के लिए प्यार भरी वादियों में अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे गुजारते हैं तो रिश्तों का जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जिस रेडियो में विविध भारती चैनल ना हो उस रेडियो को हमें सुनना नहीं। विविध भारती का साथ है तो मुझे क्या कमी है, दुख में भी मिल रहा सुकून है। जी शुक्रिया। प्रेम रूपी गहरी नदी में जो शोर रूपी लहरों के साथ नैया हिचकोले खाती नजर आती है तब किनारे पर ले आता है साथी का साथ और तूफानों से गुजर कर किनारे लग ही जाता है सच्चा प्यार। हमारे सभी साथी जो प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं वो भी हमें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है।

लगता है, ऐसा भी किसी ने हमें लिखा है। अगला कमेंट है कि इस दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सुकून सुने जाने में नहीं, समझे जाने में छिपा है। जीवन में सुनना एक दवा है, आधी दुनिया का दर्द सिर्फ सुनने से मिट जाता है। अंतर शब्दों में नहीं, उसके कहने के ढंग में होता है। मन उस नाविक जैसा है जो सबको किनारे तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद अपने किनारे की तलाश में रहता है। फिर भी उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि यही उम्मीद हमें हर दिन आगे बढ़ने की आशा देती है। नदी थी खामोश, किनारा भी अनजान था, नाव में बैठा कोई दिल का अरमान था। माझी ने पतवार थामी तो समझ आया, हर सफर को मंजिल से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। साथियों, हिंदी फिल्मों में नाव, बोट या कश्ती में बहुत सारे मशहूर और सुरीले गीत फिल्माए गए हैं, तो आज हम ऐसे ही गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो नाव में बैठे कलाकारों पर फिल्माए गए। तो आपको ऐसे कौन से गीत पसंद हैं या फिलहाल आपको याद आ रहे हैं, तो लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। और ये भी बताइए कि आपने कश्ती में बैठकर कहां कहां की सैर की। इसके अलावा आपके इलाके, शहर, गांव, कस्बे में कौन सी नदी बहती है, क्या नाम है उनके, और आप भारत में बहने वाली कितनी नदियों के नाम जानते हैं। और जब नदी, झील, नाव, कश्ती, शिकारा की बात हो तो बताएं कि कभी हाउस बोट में रहे तो कैसा लगा। और अब बात अमर प्रेम की, एक ऐसे पवित्र और अनकहे रिश्ते की कहानी जो समाज के बंधनों से परे है। दो लोगों के दरमियान एक गहरा और कोमल रिश्ता जो आत्मिक और मानसिक जुड़ाव बन जाता है। तो हमें ये बताएं, इस फिल्म का कौन सा संवाद है जो अमर हो गया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के फिल्म में निभाए गए किरदारों के नाम लिख दें। और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के पहले हिस्से में जो बाल कलाकार का किरदार था नंदू, तो बड़ा होने पर नंदू का ये किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।

0: साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए। पुष्पा और आनंद बाबू, मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हैड टीयर्स, और बड़ा होने पर
1: केवाईसी अपडेट करिबा उचित।
2: किंतु ये हबो केमिति?
1: जदि परिचय किंबा ठिकणा रे कोनोसी परिवर्तन नाही, तेबे निजो बैंक किंबा एटीएम किंबा बिजनेस करेस्पोंडेंट माने बीसी को पाखो को जानतु, किंबा बैंक रे पंजीकृत ईमेल किंबा मोबाइल नंबर किंबा मोबाइल बैंकिंग ऐप किंबा चिट्ठी माध्यम रे एहार स्वघोषणा दियंतु।
2: अच्छा, आउ जदि कोनोसी परिवर्तन थाए तो
1: से क्षेत्र रे परिचय एवं ठिकणा रो सर्वशेष प्रमाण देई केवाईसी अपडेट करै परिबे।
2: बस
1: बस
2: बुझी गली।
1: निजर केवाईसी अपडेट करिबा पई निजर निकटस्थ ग्राम पंचायतर कैंप किंबा बैंक शाखा को जानतु।
3: आरबीआई कहे
1: सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।
4: प्रेजेंट करूछु नारी महल।

0: leading their head-to-head record 10-7. In Grand Slam finals, the two have also faced each other at the Australian Open, with Rybakina winning in 2026 and Sabalenka claiming the title in 2023. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Singh Sahib today. In a social media post, Mr. Shah said that the sacred scripture encompasses invaluable teachings on service, sacrifice and equality. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for 2 days summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts. Also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से, लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
2: जी जागृति, देखिए।
1: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
2: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
1: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर

0: @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।

0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायवाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद ता पूर्व विज्ञापन
2: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखी सैति
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए
1: सबुरी भाषा रे केवल आकाशवाणी।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है शैलेंद्र, धुन है शंकर जय किशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाजों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गणेश पेठ पार्थी पुणे से, अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, कोटवा नारायणपुर यूपी से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, कर्नाटक स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत, बडेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा, राजस्थान जोधपुर से अशोक बाणिया, प्रेमलता और सुमित बाणिया, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

0: साथियों, मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, आकाश जाधव और पवन राजे जाधव, गांव हिप्पर सोगा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख, लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार, कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग शीतल, लोकेंद्र और राम बाबू मालवीय, ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषी, चिऊ माऊ और बिट्टू की पसंद पर सुनिए ये गीत।
1: खिलौना जान कर तू

द्रविद भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आर एस पुरी, बीके पुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी, मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता, कृष्णा, सावित्री, राज, प्रथम राज, अंजलि, पलक, अमीशा, अनुष्का, आशीष, लक्षिता, जतिन, मनोहर लाल सोनगरा, सरोज, दायमा, अखिल, दायमा एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा। बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निशा, निहारिका, सोनू और मोनू रावल। नजीरगंज नेपाली पाड़ा जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक लिंबू, रितेश लिंबू, उषा, ज्योति, किरण, दिरशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार। भुट्टो मंडी

गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा, शानू और निमो। कोटदा बहादुर जिला मंदसौर एमपी से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाजियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी, जिला मोहाली, पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाजार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम जावेद, उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ बीड शहर से पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव। इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल।

0: अच्छा जी
1: हैं? अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नक्काल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
0: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे आशा जी, आप तो बुरा मान गई।
3: लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं।
1: शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, टंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है?
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबीलाल जी आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो?
1: दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
4: अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा है? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: हाँ, अब तुम्हें कौन रोके भाई। हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुँचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
1: आपका ये हिसाब

0: कुछ अटपटा है मिर्ची। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं? मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूं आप ही की तरह, ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है।
1: काल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
0: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहाँ से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
2: बड़े साहब जी हैं?
0: है? ये कैसा सवाल है? मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
2: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
0: अरे
2: कब आएंगे?
0: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
3: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था?
2: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
3: जी,
2: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
3: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
2: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
1: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
2: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
1: अच्छा,
2: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
1: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बात सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
2: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। पर क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
0: इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
2: सर आप बुरा न माने तो एक बात को।
1: हाँ हाँ बोलो बोलो।
2: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
1: अरे श्रीमान जी हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
0: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
1: दफ्तर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
0: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
3: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
0: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ क्या नाम है आपका?
2: जी सत्यमूर्ति।
1: सत्यमूर्ति जी यहाँ आइए, एक बार बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना? आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
2: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना मैं आपका एहसान मानूंगा।
1: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा
2: जी?
1: अरे आप तो क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता।
2: जी जी जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ, इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
1: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई।
0: चौकन्ना टेलीफोन उठाना। ओ कहाँ मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
3: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
0: हिसाबी लाल जी।
1: सर आप सीनियर हैं।
0: ओहो ठीक है ठीक है, मैं ही उठाता।
1: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
0: लगता है। साहब जी आ गए, आज बहुत जल्दी आ गए
1: लगता है। साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।

0: जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
1: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
2: भाई शाम आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
3: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
4: नक्काल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
1: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
5: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है? स्टुपिड, मेरा मुंह क्या ताकते हो? जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
2: जी सर।
0: सर अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
1: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा।
0: जी
1: हाँ, कल आना कल।
6: वो रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
7: हिसाबी लाल जी, आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
8: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है?
9: कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, न झाड़ न क्वेरी।
8: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
1: कर लो।
8: आशा जी, आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
10: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ?
8: ये भी ठीक है।
0: नमस्कार सर,
7: कहिए क्या काम है?
0: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
7: हाँ ठीक है ठीक है।
8: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं?
7: जी हाँ।
4: नक्काल बाबू,
7: हाँ
4: आपको साहब बुला रहे हैं।
7: हाँ ठीक है, आता हूँ। आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
11: नमस्कार सर।
4: नमस्कार। नक्काल बाबू जी, मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
11: कहिए सर।
4: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है
11: जी,
4: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है, और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
11: ओह तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
4: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
11: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते है ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा?
4: वही तो मेरी समस्या है, जाऊं तो कैसे जाऊं?
11: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी दीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
4: नक्काल बाबू
11: जी,
4: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं।
11: जी
4: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते।
11: जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
4: हाँ ठीक है, सारे डेट्स जरा ठीक तरह से नोट कर।
11: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ।
4: उपूर पुतूर बसरूर,
11: 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
8: अरे ये क्या रट रहे हो नक्काल बाबू?
11: साहब जी का टूर प्रोग्राम 11, 12, 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
8: अरे वाह।
0: सर वो मेरा प्रमाण पत्र?
7: भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए, हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
0: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
7: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे पास आएगी ना।
8: सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं?
7: बिल्कुल,
8: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
0: तो फिर मैं कब आऊं?
7: कल आना, कल
0: कल कल तो इतवार है।
7: ओहो तो सोमवार को आइए, इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
4: नक्काल बाबू
11: जी। सर
4: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
11: जी हाँ सर।

0: लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
1: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
0: पर सर, लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर, ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
1: खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड।
0: जी हाँ, होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए।
1: ये कैसी बातें करते हैं नकाल बाबू
0: जी।
1: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
0: जी,
1: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा
0: जी।
1: और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
0: साहब जी, ये असल में सर्कुलर नहीं, सर्कुलर है।
1: खैर, अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए। उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
0: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 काफी मंगा लूंगा।
1: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
0: सर, आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगी।
1: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना?
0: जी हाँ साहब, हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही। फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर, तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
1: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
0: ओके साहब। सर, मैं चाहता हूँ कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
1: अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम?
0: जी,
1: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
0: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूँ।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा।
1: और क्या,
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: भाई चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट।
3: क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से।
3: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है, इसको।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट दो।
3: ये लीजिए।
0: उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके।
4: ओ चने वाले दादाजी जी, आइए जरा।
3: और चाहिए ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना।
1: दादाजी आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना।
3: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
0: क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
3: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
1: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया।
3: नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो

0: सत्यमूर्ति चले वाला हूं, पर इसका प्रमाण पत्र नहीं है।
1: अब ये चना खाने से हमने प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी, इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध द्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
2: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
1: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
2: मैं आशावादी हूँ।
1: हाँ, तुम हो ही आशा।
2: कम से कम तुम जैसी सिनिक कभी तो नहीं हूँ।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने, मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
3: पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी आ रहा हूँ।
4: हिसाब बिलाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
3: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
5: बच्चे भी कुछ
3: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
6: नक्काल बाबू,
4: क्या
6: वो एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
4: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
6: आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल?
0: हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
4: साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
0: अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
4: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर।
3: सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान है, फिर उसको हर जगह पर टंगवा देते हैं।
0: हाँ, वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
4: उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
0: हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
3: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
4: ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए।
7: बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
0: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
4: जी,
0: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
7: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
0: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
4: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
0: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
3: साहब जी, हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते स्वतंत्रता सेनानी है,

0: उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर?
1: हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है,
2: मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा।
0: बेचारा शरीर बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
3: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा।

0: तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहाँ मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित होंगे।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुलाकर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबी लाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं, यही नहीं वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए।
4: गरम चना, बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए था, चना खाइए चना।
5: अजी महाजन सब
4: बड़ा मजेदार चना है।
5: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ, अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही है। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: भाई कहना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना मसालेदार चना, चना खाइए साहब।
5: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा।
6: आपको वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
7: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
5: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
7: समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
6: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
7: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र
5: सब दिया जाएगा।
6: इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
8: सर, मेरी अर्जी आज नहीं होगा, कल आना, कल।
9: साहब जी मेरा प्रमाण पत्र, आप जाओ भी, कह दिया ना कल आना, कल।
5: अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
7: क्या कहा, कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है।

0: ये गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
1: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं साथ।
0: ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉम्बे टॉकीज।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
4: उस
3: जहां
4: महफिल में
3: फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफी आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या ये आदमी जो

0: महफिल ही ऐसी होती है,
1: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो। पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है, क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। मानना है कि भाई जियो और जीने दो, और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है। आप उसको नहीं सिखा सकते।
0: तो बाबा आजमी ने आपको,
1: उन्होंने तो दिया एक हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही हैं अपने जीवन के साथ। ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली, और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए। बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे, रियाज जब शुरू किया तो पता चला गले का जो चाम है
0: वो फ्लैट हो
1: गया, जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो दो साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
0: अरे बाप रे,
1: 2014 की बात है, एफटीआई के बाद। और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई

तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छोड़े हुए बचपन में छूट गया गाना ना, बट वो

0: और फिर हम दो साल जेन्युइनली मेहनत किया, रियाज किया। डिप्रेशन भी आया उस फेज में क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना सकते हैं एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
1: कैसे निराशा का सामना किया?
0: इस बार हम टूट गए बिल्कुल। इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई।

0: अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है, तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: उसी उसी उसी समाज का हिस्सा है। पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी। कितनी बड़ी बात है ये।
1: बिल्कुल,
0: वो भी तो मर्द ही है ना।
1: बिल्कुल,
0: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है। पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा। आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद। बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो। तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते, जाओ उड़ो, बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो, यू नो। बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पस स्टूडियो है जैसे ये, कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था। हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे। ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
1: और इसलिए आप संभल गए।
0: इसलिए हम संभल गए।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई?
1: बिल्कुल, पूरी तरह से।
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार?
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट दो रहे थे, वो घर चेंज किया और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहाँ के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहाँ के फोक म्यूजिक को सुने।

0: जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है उसमें बिहार का नाम नहीं था, और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इससे योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
1: झारखंड था,
0: यूपी है,
1: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था,
0: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता, और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं ये बात,
2: और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं। पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा,
0: इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है, मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं। पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम, और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बो या बनी जई हो बनी के जोगिनिया हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है या भोजपुरी में जो मेरी नानी गान
2: में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है उर्दू पोएट्री
1: मनीष गुप्ता का
2: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात।
1: अच्छा ओ हो हो हो हो वो आपने किया था
2: जी।
1: देखिए मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक है
2: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये, और क्योंकि हम यू नो जस्ट उस फेज से निकले थे वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
1: खूब चलता है, वो
2: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।
1: ओरिजिनली छाया जी ने गाया है
2: जी,
1: और मजेदार बात ये है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
2: ओ कैसा ये सर्कल है। हाँ,
1: बिल्कुल।
2: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको
1: चलता है वो
0: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।
1: ओरिजिनली छाया जी ने कहा है
0: जी,
1: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
0: ओ कैसा ये सर्कल है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि
2: हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
1: और मैंने क्या समझा पता है?
2: हाँ।
1: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने वो वीडियो बहुत देखा है।
2: अच्छा।
1: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ
2: अच्छा।
1: कुछ कविताएं पढ़ी हैं।
2: ओह हो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया
1: दो कैमराज
2: लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज भोजपुरी में। अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन। उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे,
2: ढूंढ रहे,
1: ऐलान किया था।
2: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
1: वो भी हमारे दोस्त।
2: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आप

0: बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर, तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर, तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने
1: दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
2: क्या बात है, और वो खूब चला,
0: खूब चला
2: और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
2: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट
2: वो भी मजेदार है, उसमें तो अपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ उसमें तो
2: जब जो मर्जी आई है गाया है,
0: जब जो दिल में आया है। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे,
2: और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
2: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट
2: वो भी मजेदार है, उसमें तो अपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ उसमें तो
2: जब जो मर्जी आई है गाया है,
0: जब जो दिल में आया है। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
2: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
0: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ,
2: पैरेलली शुरू हुआ, और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
0: ये कमाल है, 2017 पार्किंग लॉट सीरीज
2: और वो भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला,
2: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, ए आर रहमान सुन ले हमको बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
2: और उन्होंने सुन ली,
0: और उन्होंने सुन ली।
2: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
2: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
2: उनका भी
0: जन्मदिन है,
2: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
2: अरे बाप रे
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे
1: एआर रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माई इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
2: ये एक जरिया बना।
1: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और यार रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं।
2: वाह।
1: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा। ये जो
2: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के।
1: हाँ।

0: कंफ्यूजन के साथ।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए, आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके। अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी, लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था, और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास प्लीज।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं,
0: उन्होंने कहा था
1: इंस्टाग्राम।
0: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
1: तो ये 3 साल पहले की बात है, मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही। पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
0: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
1: ओहो कैसे बताएं हम हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहां रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहां पर हमको बुलाया गया था
0: चेन्नई में एआर रहमान स्टूडियोज।
1: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका
0: बिल्कुल।
1: और जब हम पहुंचे तो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में एआर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है तुमको क्या चाहिए। तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और एआर रहमान का एक गाना हो सोलो।
0: एग्जैक्टली ये बोला,
1: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
0: वाह वाह वाह क्या बात,
1: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती।
0: क्या बात है, क्या बात है, और ये संभव हुआ।
1: मैं ऐश्वर्य ने बोला भी कि एआर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिडोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नजर में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर एआर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे, आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा एआर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
0: अरे गजब।
1: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
0: एग्जैक्ट 6 महीने,
1: एग्जैक्ट 6 महीने।
0: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
1: जादुई है, जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
0: दीपाली ये एक ऐसा गाना है मैं वापस आऊंगा का गाना कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गईं, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुन कर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
1: जी जरूर।

0: जब आप ये सारे गाने एक के बाद एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है, ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे।

0: तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बहुत बड़ी
0: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके
1: संशय था।
0: हाँ कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है, ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये वो ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं ये लोग। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है, और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो,
1: वाह वाह।
0: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूं, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूं। ये जो बातें थी ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा।
1: बिल्कुल
0: ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
1: बिल्कुल
0: और
1: वो सुन के
0: इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
1: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोख गाने भी हैं
0: आ
1: जो, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
0: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम है,
0: कंप्लीट एल्बम है। यस,
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना,
1: अच्छा।
0: जिसने गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका,
1: बिल्कुल,
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट,
1: उसको ये मौका दिया गया,
0: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है रहमान सर,
1: पर हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।

0: रखना।
1: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थीं तब रहमान नहीं थे सामने।
2: नहीं थे जी।
1: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
2: जी,
1: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
2: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
1: क्या बात,
2: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल,
2: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला ना, सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो। और हम लोग चलना शुरू किए और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके बाद हम लोग अंदर गए और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से,

0: तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है,
1: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
0: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद।
1: वाह वाह।
0: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम एआर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
1: ओ हो हो हो हो।
0: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
1: क्या बात है, क्या गाया?
0: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है।

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मे भी इसलिए शायद, वेरी गुड एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है, और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है, और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
0: असली रूह
1: इनमें है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था, और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास, उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है,
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है, क्या बात है,
1: वो लोग अटकते हैं इसमें।
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है, और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह।
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहाँ तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
0: क्या बात है।
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की हमने ऐश्वर्या की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
1: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्या ने एक रियलिटी शो जीता था। वो बिहार से पहले थे, और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे।
0: अच्छा?
1: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है। बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है।

0: पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
1: मतलब बरसों बाद।
0: बरसों बाद 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे, और 2006 में जब ऐश्वर्या को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्या से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे, मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है घर, ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात ये है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत,
1: है ना, अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है, हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्या एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार है, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्या वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहाँ एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह,
0: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है,
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम, वो जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है, और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो,
0: हाँ।

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था।
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी,
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई और कुछ बातचीत ऐसी होती है कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो, लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी।
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं। चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हो, वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग,
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने इस जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो जिसने कहा था
1: छोटी सी ये दुनिया।

0: या दिल की बातों को होठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ न कहें फिर भी आप जान जाएंगे।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फायदा

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसासे मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे

तुझे देखकर खिले दिल की कलियां, महकने लगी हैं मोहब्बत की गलियां। उड़ती हूँ आसमान में मन की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों सी शान है। खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ। अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाज़ यूं, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे, मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना कहेंगे।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ताल से, आवाजें हरिहरन और सुखविंदर सिंह की, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत एआर रहमान का।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है महासटैली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गति लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
1: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रेड 2 से, आवाजें परंपरा टंडन और सचेत टंडन की थी। गीत के बोल लिखे थे कौसर मुनीर ने और संगीत सचेत परंपरा का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म इश्क से, आवाज़ें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की थी। गीत के बोल राहत इंदौरी के और संगीत अनु मलिक का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

लाहौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: श्रोताओं ने गीत आपने सुना विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से, आवाजें सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत संदेश शांडिल्य वाइट नॉइस कलेक्शन का था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
4: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम आम केन्द्र 318।

0: केवल खबर पूरी खबर।
1: कार्यक्रम रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी कटक केन्द्रर आकाशवाणी बारिपदा स्टुडियो घडीरे समय वर्तमान संध्या 6:05 प्रचार करुछु केतोटी भक्तिगीत। भक्तिगीतर प्रथम शिल्पी विनोदिनी साहू, कंठरी तांकर अलेख विश्वाळंक रचना।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ପିଲାଟା ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଇ ଏତେ ସରିହେଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ORS ଦେଇନ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁକୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ତା ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ ଏବଂ ଦେହ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ। ପିଲାଟା ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ, ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଧୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁକୁ ORS ମିଶା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏଥିସହିତ ଜିଙ୍କ ବଟିକା ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ।

संवाद विभाग उपस्थापनारे मु सुभाष चंद्र शतपथी जीवन रक्षा क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सार भूमिका नहीं सचेतनता सृष्टि करने लक्ष्य में प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास द्वितीय शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भाव पालन करा प्राथमिक चिकित्सा हेउची एक जरूरीकालीन पदक्षेप जहां मुख्यतः सरल एवं प्राथमिक स्तर में चिकित्सा प्रदान को गुरुत्व देथाए सर्वनिम्न उपकरण उपयोग एवं चिकित्सा विज्ञान संपर्क में ज्ञान न थाई मध्य याकु कार्यकारी करा जाई पारिबो फलरे बहु अमूल्य जीवन हानि रोका जाई पारिबो अघटन स्थल में उपस्थित थिबा व्यक्ति ही निजर सम्यक ज्ञान एवं चिंताधारा माध्यम रे प्रभावित व्यक्ति को जेऊं चिकित्सा प्रदान करिथे ताकु प्राथमिक चिकित्सा भाव में ग्रहण करा जाई थाए विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा आरंभ हेबा पूर्वरु एही प्राथमिक पदक्षेप बहु गुरुत्वपूर्ण सब्यस्त होइथाए जदियो चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र रे याकु मूल्यवान चिकित्सा बोली ग्रहण करा जाए नाही तथापि जीवन बचाइबारे एहा उल्लेखनीय होइथाए प्राथमिक चिकित्सार मूल लक्ष्य हेउछि जीवन रक्षा करिबा पूर्वावस्था को फेराइ आनिबा पई प्रोत्साहन प्रदान करिबा अधिक अवनति को रोकिबा एवं निकटस्थ स्वास्थ्य सेवा केन्द्र को सुरक्षित भाव पहुंचाइबा एक आकलन अनुजाई प्राथमिक चिकित्सा प्रदान द्वारा जीवन हानि जनित परिस्थिति को बहु परिमाण में प्रतिहत करा जाई पारिछि हृदघात दुर्घटना अग्निकाण्ड एवं प्राकृतिक दुर्विपाक भली परिस्थिति पाई प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत मूल्यवान सब्यस्त होइथाए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान क्षेत्र में लोकंकु अधिक सचेतन करिबा एवं प्रशिक्षण प्रदान नहीं विश्व स्तर में बहुविध पदक्षेप ग्रहण कराउछि चलित वर्षर वार्ता रही प्रवासन बेले प्राथमिक चिकित्सा आंतर्जातिक क्षेत्र में प्रवासी शरणार्थी एवं विस्थापित लोकंक पई जीवन रक्षाकारी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य उपलब्धता एवं मानविक जत्न को यह प्रतिफलन करुछि प्राक ऐतिहासिक समयरु आरंभ होइतिबा एही प्राथमिक चिकित्सा आघातप्राप्त लोकंकु प्राकृतिक उपायरे चिकित्सा प्रदानर मार्ग दर्शाइथिला ऊनविंश शताब्दी में यह क्रमशः विकसित होबाकु आरंभ करिथिला 1878 मसीहारे लंडनर ओलविज स्थित रॉयल हर्बर्ट सामरिक हस्पिटाल शल्य चिकित्सक मेजर पीटर सेफर्ड एवं आबरडिनशायर सामरिक अधिकारी कर्नल फ्रांसिस डंकन प्राथमिक चिकित्सा दक्षतार साधारण नागरिकंकु तालीम प्रदान आरंभ करिथिले युद्ध क्षेत्र में आहतंकु प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करिबा लक्ष्य नहीं रॉयल ह्यूमन सोसाइटी एवं सामरिक शल्य चिकित्सकंक द्वारा एभली तालीम प्रदान कार्य आरंभ होइथिला एपरिकी मेजर पीटर सेफर्ड प्राथमिक चिकित्सा पाई एक पाठ्यक्रम मध्य प्रस्तुत करिथिले परे स्विस व्यवसायी हेनरी डुनांट आंतर्जातिक कमिटी रेडक्रॉस प्रतिष्ठा करी प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र को अधिक गतिशील कराइथिले 2000 मसीहा सेप्टेम्बर मास द्वितीय शनिवार दिन आंतर्जातिक रेडक्रॉस एवं रेड क्रिसेंट सोसाइटी फेडरेशन द्वारा प्रथम ही दिवस पालन होइथिला सेही दिन ठारु प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मास द्वितीय शनिवार रे विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पालित होइआसुछि हृदघात निश्वास प्रश्वास रे कष्ट अनुभव करिबा गुरुतर रक्तस्राव क्षेत्र रे प्राथमिक चिकित्सा बरदान सदृश होइथाए प्राथमिक चिकित्सा संपर्क रे सचेतनता वृद्धि नै विद्यालय स्तर ठारु आरंभ करि विभिन्न क्षेत्र रे तालीम प्रदान करा जाउछि केन्द्र सरकारक द्वारा प्रणीत प्राथमिक चिकित्सा नीति गुडीक मुख्यतः कारखाना आईन रे अंतर्भुक्त रहिछि शिल्प क्षेत्र रे प्राथमिक चिकित्सा उपकरण रखिबा एवं यहार व्यवहार नै कर्मचारीक प्रशिक्षण प्रदान करबाकु बाध्यतामूलक करा जाइछि रेल स्टेशन एवं ट्रेन गुडीक रे मध्य प्राथमिक चिकित्सा किट रो व्यवस्था करा जाइछि विद्यालय एवं कर्मक्षेत्र गुड़िक सीपीआर तालीम प्रदान व्यवस्था होउछि फलरे प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा एवं भित्तिभूमि क्षेत्र सुदृढ़ होइछि एपरिकी प्राथमिक चिकित्सा को प्रोत्साहन प्रदान करने लक्ष्य नहीं सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रालय पक्षर स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण कर दुर्घटना रे आहत व्यक्ति को स्वेच्छाकृत भाव सहायता प्रदान करुवा लोकों पर भारतीय समरिटान सुरक्षा निर्देशावली माध्यम रे सुरक्षा प्रदान करा को फौजदारी दायित्व निवृत्त रखा जा दैनंदिन जीवन में प्राथमिक चिकित्सा आधारित ज्ञानर बहु प्रासंगिकता रही संपर्क में आम समस्ते जाणी उचित एथिपाई व्यक्तिगत स्तर में प्रयासर आवश्यकता रही आवश्यक स्थले आम परिपार्श्वरे घटुवा घटन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान माध्यम अमूल्य जीवन बचाइबारे सफल होइपरिबा

0: वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: ना नवघन भाई देखा ना मागुणी देखा, संज बुड़ी तमे सिना बैठकी घर को आसब, आम टे चाषवास विषय कथा हवा, आउ दिने दि दिन रहा गणेश पूजा, सब तो सही माति थे।
7: किए आम
6: मागुणी कि
7: चिन्ह कौन पारुच
6: नाई बा, मु जानी थी तमे से आमर जो बाउंश बंधा बंदी चली थी।
7: ये कथा कौन जानी अपा
6: कौन है बा
7: आसुले बा, ये तल साई छक मुंड गोटे दुर्घटना है।
6: ओहो
7: घटना कौन, सेपट गोटे बैक बाला आसुला, आपट गोटे बैक बाला जाऊला, ये हर्न बोधे कार खराब है कौन, दिज तो सामना सामने बाडाबाडी गले,
6: गाड़ी कौन चलेला भाया चलाऊ
7: पूरा हेलमेट ना
6: देखुन ये तो भूल कर जीवन सबुबले आमे लोक मानंकु सचेतन करूचु गाड़ी धीरे चलांतु, मोबाइल व्यवहार करंतु नाही,
7: आ हेलमेट ता सबळे पिंधिकी गाड़ी ती चलांतु।
6: हां मागुणी कोन हैला बा कहू,
7: ये घटना कोन हैला, दि जण को मुंडर हेलमेट नाही,
6: हां
7: आ मुहामुही माटटी हिची, आ दि जण जाको छिटकी पडिचंदि, आ सेठी 4-5 टका होरिया श्याम आ मु तिनी जण तो दौड़ी गेलु फट कि ना, आ दि जण को सेठु तळे पडिथिले उठिलु, उठैकी बसैलु, आ रक्त तो धार धार जणकर नाक दंडी फाटी जाई छी, आ जणकर मुंड फाटी जाई
6: छी, आ तनो टिके पानी फाडी छी
7: दिजनकर जनकर सेंस नथिला, ताको टिके पानी फाणी छिंची देलु सेंस आसिला, आउ जनकर तो नाक दंडी फाटी की रक्त तो प्रबल श्राव होउची, रुमालटा तुरंत तांको नाकरे दे देली, आउ पाटी पाटी से निश्वास नेले,
6: जाउ टिके तुपा चिकित्सा करी देइजो।
7: आ ये सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला, जदि दुर्घटनाटा घटिला प्राथमिक चिकित्सा जदि न होबो ताहाले रोगी तो आहुरी गुरुतर होइजिवो।
6: नाही नाही आगो आमे प्राथमिक चिकित्सा करिबा, जदि आमा हात पांदरे सेटा भल होइजिवो ताहाले असुविधा कोन।
7: तापर कोन ला जानचो, 108 आम्बुलेंस को डाकिलु, आम्बुलेंस रे दिजन को नै डाक्टर खाना रे उपयुक्त चिकित्सा देलु।
6: भलो कामटिए कल मागुणी, ईश्वर तुमको आशीर्वाद करंतु, कल्याण करंतु, एमिती आमे जदि तत्क्षणात चिकित्सा टिके जोगै दबा आ टिके जीवन फेरी पाइबो, सुस्थ रहिबे। अरे हे ए कथार गुटे कथा मन पडिला बा।
7: ओ कथा बा,
6: अरे आज माने सेप्टेम्बर मासर द्वितीय शनिवार को आमे को दिवस रूपे पालन करूचे कहिलो।
7: विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस,
6: जीवन बचाइबारे प्राथमिक चिकित्सार महत्व आउ सचेतनता सृष्टि करिबा पाई आमे आजिर दिन को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस रूपे पालन करूछे।
7: ठीक सही पई आज गोटे बढ़िया कथाटे गोटे मन पड़ला कहिबे, एक मुहूर्त एक साहाज्य बदलाई दिए जीवन रो गति,
6: जानिथिबा प्रथम सहायता होई पारे जीवन रो साथी।
7: बस ठीक कथाटी तमे कहिछो अपा,
6: आउ एने तो पार्वण रो ऋतु आसिला, एई समय रे आमे समस्त टिके सचेतन होबा निज देह पा प्रति, आउ जेतेबेले बाहर को बाहरु छे गाड़ी मोटर नै जाउ छे, मोबाइल व्यवहार करिबा नाही, हेलमेट व्यवहार करिबा।
7: एई अपा एई पूजा समय रे बेसी आमर युवक युवती अन्य मनस्क कहि कि गाड़ी चलैबे, ये कान रे फोन टा लगे दे कि गाड़ी चलौतबे, सही से लागि तो बेसी दुर्घटना होउछि, आउ तेनु करी आमर सेई युवक युवती भाई भौणी माने पूजा करो, ठाकुर प्रति मन दियो, किंतु ये मन इच्छा गाड़ी चलैबा बा मोबाइल धर कि गाड़ी न चलाओ जेमिति।
6: हां आमे समस्त सचेतन होबा।
7: हौ ये अपा ये मनटा तो मोटी आज भलो नै, ये गोटे काम करो, गोटे भलो गीतटे सुनाओ, ये मन टिके खुशी लागिबो।
6: हौ हौ

परवर्ती गीतटी नेइछु हम आपके दिल में रहते हैं चलचित्ररु द्वैत कंठरे गाइछन्ति शिल्पी कुमार सानू एवं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलेना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे

0: समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
0: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने

0: राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
1: I would like to say that the outcome document.
2: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
1: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
3: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की।

0: वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोफ को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds a series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova. And in US Open, defending champion Aryna Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है. आज अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
3: Here is more from our correspondent.
4: BRICS member countries expressed deep concern over continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They urged to ensure protection of civilians and civilian infrastructure in accordance with purposes and principles of the Charter of the United Nations. BRICS members further expressed serious concern over deliberate attacks on civilian infrastructure and peaceful nuclear facilities under full safeguards of the International Atomic Energy Agency. BRICS leaders also called for implementation of the relevant UNGA and UNSC resolutions and urged all parties to ensure the maintenance of ceasefire and full and unhindered humanitarian access in the Gaza Strip. They strongly condemned any acts of terrorism as criminal and unjustifiable regardless of their motivation. They condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms. BRICS members reaffirmed commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. With BRICS team, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
2: ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है. हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो. इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 proposals तैयार करें.
3: The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years.
2: अब समय है कि हम BRICS में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले. अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए.
3: The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
2: क्या हम seafarers इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा. इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है.
3: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म गदर 2 से। आवाज़ें विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल लिखे थे यंगवीर रोहताश गैक्सिनिया ने और संगीत ऋत्विक कलछिलकर शाइन और राज मावेर का था। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये है विविध भारती।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

फिल्म संगीत के समुद्र में गोता लगाएं तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

शंकर जयकिशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जयकिशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जयकिशन है चांद।

ये गीत संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाने लगे। आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाडी लाल जी से हुई। फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

0: का नहीं, अब किसी तो किसी पर भरोसा नहीं, अब कहाँ जाए हम।
1: रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

किसी का खेल देखिए कि कुछ ही समय के बाद जयकिशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जयकिशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीत का जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते थे।

रोचक बात ये है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहाँ से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर करें।

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

जयकिशन रूमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुने बनाने के साथ साथ जयकिशन शायरी और कविता के भी बड़े शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था,

दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीत का जय किशन एक सीधे सादे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जय किशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

संगीत का जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कहिले हे प्रभु आपण पांडव मानक निमंत्रण रक्षा करी राजस्वीय यज्ञ कार्य रे योगदान करंतु सेठारे बहुत राजा मेळ हेउथिबे शिशुपाल मध्ये आसुथिबो पांडव माने जेउ प्रकार सम्मान देबे सेथि ईर्षान्वित होइसे आपणक तथा पांडव मानक तिरस्कार करी गोटिए परे गोटिए दोष करी चलिबो ता मा आगरे आपण पूर्वरु 100 दोष जाय क्षमा करिवे बोली प्रतिश्रुति प्रदान करथिले मात्र तार दोष संख्या सेठारे हि 100 रु बळी जीवो सुतराम शिशुपाल आपण का हात सेठारे बळी पडिबो द्वारा कि इंद्रंकर अभिलाष मध्य पूर्ण हेबो उद्धवंकर एतादृश मंतव्य कृष्णक मनकु बेस पाइला चतुरंग बलस जाई कृष्ण समुद्र सीमा रैवत पर्वत तथा जमुना नदी पार होई इंद्रप्रस्थ नगरी जाई पहुंचिले हरिया।

सुपाल सही रहंता यहाँ देखी के सुनो यहाँ मंडली सभा मध्य सर्वसमक्ष युधिष्ठिर समेत पांडव माने कृष्ण को यह सम्मान देले जहाँ देखी समस्त प्रशंसा कर उठिले मात्र शिशुपाल यह देखी सही पारा ना कारण आत्माभिमानी व्यक्ति अन्नर सम्मान वृद्धि सहायक न हो अंतरा ही सृष्टि कर शिशुपाल युधिष्ठिर कहला जद पुपुज स्तमी पार्थ मुरजितम सतांग प्रेम विलसती महत दोहो दैतम जनह खळु गुणीति मन्यते अर्थात प्रिय व्यक्तिर दोष गुण भली लागे मात्र अप्रिय व्यक्तिर गुण दोष भली लागे यही कारण तुम्हें माने गुणहीन कृष्णर पूजा को बड़ मन कल जानी शुणी नृप।

사우서 자라래 자라 동해의 희노 우크비우 자라 नदी उच्च स्थान त्याग करि निम्न को गति कला परि रे गंगा नंदन भीष्म गुणवान राजा माने थाउ थाउ तू सेमानन को छाडी गुण हिना कृष्ण को बड़ मने कलु तत्परे कृष्ण को शिशुपाल कहिला रे निर्बोध कृष्ण सेमान सिना जानी न पारि तते पूजा करिया को आगे आसीले मात्र तू जदि तो स्तर ठीक भाबरे बुझी थांतु तेबे केबे हेले एथि पई राजी होई थांतु कि असुरस्तया नवधि कोपी मधुरीति कथं प्रतियते दण्ड दलित सरघ प्रथसे मधुसूदन स्तमिति सुदयन मधु।

0: झगड़ने की क्या बात है?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हुई ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डालिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में

0: ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद रिले करि प्रचार कलु राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दिल्लीर आकाशवाणी बारिपदा स्टूडियो घड़ी समय वर्तमान राति 11:05। एथर आसंता काली आम केन्द्र प्रचार होवाकु थिबा केतोटी कार्यक्रम संपर्क रे सूचना देउछु। आसंता काली सकाळ 6:05 रे प्रचार करिवो भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। सकाळ 7:00 रे कार्यक्रम सूचना। सकाळ 7:25 रे किशोरेश्वर हेलो बारिपदा प्रचार करिबु सकाळ 8:15 रे एवं 8:35 रे। दिन 12:00 रे चहला कार्यक्रम रे प्रचार करिबु झुमर गीत परिवेषण करिबे शिल्पी सुभद्रा महांत एवं तांकर साथी कलाकार माने। संध्या 6:05 रे प्रचार करिबो भक्ति गीत सुगम संगीत प्रचार करिबो 6:15 रे सूचना संवाद 6:30 रे। राति 7:00 रे आदिवासी संगीत। राति 7:30 रे चाषबास चिठीपत्र उत्तर डायल आउट कार्यक्रम आमको कहंतु एवं राति 8:00 राति 11:45 पर्यंत प्रचार करिबो दुबई आंतर्जातिक क्रिकेट स्टेडियम ठारे प्रस्तुत महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 रिले करि प्रचार करिबो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दिल्ली रो। एथिला आसंता काली आम केन्द्र रो प्रचार हेबाकु थिबा केतडी कार्य सूची। एटी शेष करुछु आजिर कार्यक्रम। पुणि आपणमानंकु अभिवादन जणाइबु आसंताकाली प्रातः 5:55 रे। सेतेबेळ पर्यंत शुभरात्रि सह विदाय नौछु। जय हिंद।